0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
2: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
1: City FM 89.
2: We're playing your song.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
4: Let's go.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
3: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: City FM 89, we're playing your song.
6: Everybody go.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back.
7: Starts now.

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: The wait is finally over. Next up खारिया में हो रही है सेकंड बैच की इंडक्शन फॉर EASA पार्ट 147 B1 B2 ट्रेनिंग प्रोग्राम।
2: अब मिलेगी आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, वो भी यहीं पाकिस्तान में, इन प्राउड एफिलिएशन विद फ्लाई ऑन एरो इटली, अप्रूव्ड बाय इटालियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ईएनए।
3: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट, देन दिस इज योर मोमेंट टू शाइन।
2: रियल एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और ग्लोबल करियर एक्सपीरियंस, सब कुछ एक ही प्रोग्राम में।
1: लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4th October 2026. अभी अप्लाई करें एट www.nivt.edu.bk और वो भी 100% फ्री ऑन स्कॉलरशिप।
4: एट नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग डिवीजन, वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग करियर्स, वी आर शेपिंग द फ्यूचर।
5: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें।
6: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे, टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान। तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
8: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
9: यू आर लिसनिंग टू द रश आवर विद ABD।

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. Ab easy paisa debit cards ke saath pay karein aur paye up to 30% off apne favorite coffee brands pe. Tim Hortons, Coffee Mystery, Third Culture, Second Cup, Greeno and many more across Pakistan. To sip karein, save karein aur enjoy karein. Easy paisa digital bank. Easy wala bank.
6: We're playing your song.
7: Azra behen, zara baat to suno.
8: हटो पीछे, भागो।
9: अहमद, हटो वहाँ से।
10: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to

0: माल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें।
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
3: You're listening to The Rise.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa daalein.
4: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
6: The official hashtag on Twitter and Facebook. Hashtag CityFM89. That's hashtag CITYFM89.
7: Music, if used in the right way, has the ability to elevate you to a higher plane of consciousness.
8: Mala.
7: Delve into the world of devotional music that inspires.
8: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
7: Give soul to the universe and lights the path to your inner journey. Sufi R. Fridays 2 p.m. only on City FM.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
3: Yeah.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: City FM 89 sounds different.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.